संशोधन भी ये कार्यक्रम में जीवन प्रदाय उदाहरण काम को सब समय विषय में बातचीत

0: स्वास्थ्य निर्भर किया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा महत्व की बद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी की बद्धता खाती नैर्मिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में देखिए यहाँ कर स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता का जैसे कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के पद ऐसी निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटू चेक जाँच कैसे
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाटकार घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिसको मुख बाल बिना नशा डाक बिलक हाट द्वारा अनि चल्ना बिरामीहरू पर्न ब्याग फिजियो थेरापी तथा एकुपेजर थेरापी दिने बसे उपचार कैदी था
0: नशा डाक बिलक बिरामीहरूका निम्ति भिन्न अपरेसन फिजियो थेरापी तथा एकुपेजर थेरापीले सफल उपचार गर्दै
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था कैदी था असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुकर्ण सेवामा 10% छुटकी व्यवस्था कैदी था कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसगढी शाखा पाँच बाँसगढी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण बाजार
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400210 बाँसगढी बर्दिया सँगसँगै

जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै वित्तीय कोर्याला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदोष अनुसन्धान केन्द्र सम्बको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब काठमाडौँ मित्रै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

आहे संतुलित खाना खाई व्यायाम सब पकड़ी धूमपान मदिना पसे दूर रही तनाभन नियंत्रण करी आज निर्णय कालिक जीवन हजार निश्चित कारण से बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई।

संतुलित खाना खाई, व्यायाम सब डबरी, धूमपान मदिरा से दूर रही, रावण नियंत्रण करी, आज मिले का जीवन अचरा विषमा रोग से बाँची स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकार्य स्वास्थ्य कार्यालय बर्तिया से दलित पुजारी सनील।

0: कार्यक्रमात बाल अधिकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था बाल केंद्रित पत्रकारिता संचार माध्यम की भूमिका नैतिक आचार संहिता तथा बाल बालिका का सर्वोत्तम हित मत केंद्रित रहेगा समाचार संप्रेषण करने विषय में प्रशिक्षण देखेगा बाल अधिकार संयोजक विजय कुमार अधिकारी नेपाल पत्रकार महासंघ का पूर्व अध्यक्ष दुर्गालाल केसी लगाई टुकड़ा सहजीकरण कल्पनालाप कार्यशाला में लुम्बिनी प्रदेश का पार्ट जिला मसी समाविष्ट समावेशिता का आधार में दुई जना तैयार 24 जना पत्रकार सहभागी ये खबर टाइम्स एवं प्रकाश उत्तर पटेल राष्ट्रीय समाचार दिखाए इंदु से
1: जनवरी जाति के दर्शी आपदा सुकुम्बासी संघ संगठन का भूमिहीन सुकुम्बासी तथा लाठी का विद्यार्थी सरकार विरुद्ध कर आंदोलन मोर्चा चेतावनी दिए आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा निकट नेपाल सुकुम्बासी संघ लगायत संगठनका सरकार सुकुम्बासी व्यवस्थापन बनाउमा आश्वासन जेला जेलक आरोप लगाएकी मतलब लालपुटा विकास प्रतिमा आगो बढाए माग गर्न खोज आखिर नेपाल सुकुम्बासी संघका इन्चार्ज महेन्द्र खड्का विधिको प्रक्रिया अनुसार लालपुटा उपलब्ध गराइदछ संघर्ष तर नेपालमा तथा तर सरकार ढिलाइरो व्यवस्था गर्न शेरसशक्त आन्दोलनमा सुरु गर्दा चेतावनी दिनुबाट संयुक्त संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको कार्यवाहा अध्यक्ष नारायण परिश्रमले सरकार भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित समुदायका अधिकार प्रति व्यवस्था गर्न कामक प्रवेशी जनता भवन धर्म प्रार्थना आश्वासन संचालन आसन संचालन निकर सरकारमा सचिवालयबाट महाराष्ट्रिता अब जनाधिकार र संरक्षण विभाग आवश्यक पर्दछ आन्दोलन थप सशक्त बनिन समेत गतबाट
0: धारण कर

सुनसानी करना तैयार करो, तो और अगर अनुसार घना के बनी था, यहाँ दीजिए।

प्रचलित खाना खाई, व्यायाम सब गरी, धूम्रपान हटेलामा से दूर रही, तनाव नियन्त्रण गरी, आज निर्णय कार्य जीवन अथवा निसर्गका रोगमा से बाँचे स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो पूर्वाभ्यासको सहकारीमा स्वास्थ्य

से इन नेता मिलता उमेश मुस्कान के तरफ से 80-85 जयनगर निवासी शहीद के घर से मन बुला के हजार रूपए प्रभाव कर लिया थे वो कैसा लिखा नेपाली भाषा में उसको ये लोग देखता कते बात सही आयो कते बात काली उसको ये लोग देखता कते बात सही आयो कते बात काली तो काली सभी को मन मना पसी है

दूसरे को यहाँ पर बेटे भाई कहा बेटे हमने स्थानीय अब्बास खान का 8 वर्षीय छोरा सीखों से लेकर तथा 10 या 12 वर्षीय दुई छोटे परामर्श रुबीना खातून का संकलन खातून रहे को सही बताया अध्यापक से आर एस कमान ठाकुर सीआईले जानकारी दिखाया वहाँ के अनुसार प्रश्नकर्ता क्षेत्र में रही को खानों में पानी भरने पोखर भंडार सोही पोखरी में मोहन गई बाल बालिका पानी में डुबे प्रहरी जनाये

संसारी के घर में पलामा घर में प्रत्येक समय नंबर वन संसारी के घर पे